साहिब श्री गुरु नानक पातशाह दा उच्चारण कीता, जिस शब्द अंदर सतगुरु जी सानू जोत दी पहचान दसते ने, पर तुसी तको साहिबां दा इतिहास पढ़ के कि साहिबां नू बचपन विच ही कितनी लगन सी। कहिंदे ने जदों बच्चियां नाल खेलदे प्रभु भगती दीआं गल्लां करदे ते बच्चे कठे हो के सतगुर दे इर्द गिर्द बह जांदे, साहिब जी सानू भी उस मालिक दीआं गल्लां सुनाओ। कहिंदे ने सारा सारा दिन बीत जाना, उन्हां बच्चियां ने सतगुर दे मुखो मिठे मिठे बोल सुन के अपने घर जाना भी भुल जाना। जिस वेले रात पैनी सतगुरु जी ने भैन जी नूं बेनती करनी, भैन जी ना तां मेरा चित करदा कि इन्हां बच्चियां तो दूर होवां ते ना ये बच्चे मेथों दूर हुंदे ने, ते तुसी किरपा करो रात दा भोजन असीं इकट्ठे ही छकांगे कठे ही खावांगे, तुसी इन्हां लई भी भोजन तैयार कर लो। सो कहण तो भाव सतगुर ने केवल यह बचन आख्या नहीं, पहले बचन नूं कमाया है कि सब अंदर परमात्मा दी जोत नूं वेखणा। छोटे छोटे बाल जो नगर दे विच रहण वाले ने, वो जे घर विच आ के बह गए ने ते इको जगह बैठ के प्रसाद छकना है, किसी प्रकार का कोई पिन पेत नहीं रखना। इसलिए साहब कहिंदे ने भाई आओ आपां जोत वेखी।

कि भाई इस संसार विच जेड़ा भी मनुख आया है उस अंदर जोत एक परमात्मा दी ही है, क्योंकि जोत तो बिना कोई भी इंसान नहीं है। धन गुरु अमरदास पातशाह का उपदेश है, ए शरीरा मेरिया हर तुम में जोत रखी तां तू जग में आए। ए गल वखरी है कि आपा जोत देख नहीं रहे, पर जोत तो बिना कोई भी नहीं, सारियां अंदर जोत परमात्मा दी है। हुण जोत नजर क्यों नहीं आउंदी? पांडे ने सवाल किया, पातशाह जे सारियां अंदर जोत है ते जोत नजर क्यों नहीं आउंदी? साहब कह लगे, पांडा जी गल इंज है कि दुनिया दे लोकां ने जात दी दीवार इतनी वड्डी कर दित्ती है कि सानू जोत नजर नहीं आउंदी। हुण जद सामने दीवार ही खड़ी हो जाए जोत किवें नजर आवे? कहिंदे ने जोत है अंदर, पर इसे अंदर एक होमे दी जात दी दीवार भी खड़ी होई है। जद तक वह दीवार नहीं गिरदी जोत नजर नहीं आउंदी, क्योंकि जोत तो अंदर ही है ना, बाहर नहीं है, जोत अंदर है। पर उस जोत नूं प्रगट करना है। वो जोत प्रगट किवें होवेगी? साहब कहिंदे ने जात ना पुछ जोत दी पहचान कर। ते जोत दी पहचान तां हो सकती है आपां पहले जात भुल जाइए, आपां जात नूं छड़ दईए, ऊच नीच छड़ दईए, अमीर गरीब छड़ दईए, वड्डा छोटा छड़ दईए। कते मन च ऐसा ख्याल ना आवे, कहिंदे ने फिर जोत दी पहचान हो सकती है। साहिबां ने

हे परमात्मा, मरण तो बाद मुक्ति किन्नी वेखी है, मुक्ति देनी आ ते जिउंदियां दे, जिउंदियां मुक्ति चाहीदी है मरण तो बाद नहीं। ते ए पंडता ने जो मेरी बेपती कीती है मेरी नहीं तेरी है, क्योंकि मैं तेरी भगती करन आया मंदिर विच, इन्हां मैनू चुक के बाहर मारे है। कहिंदे ने अकालपुर कोलों बर्दाश्त

अकी चढ़ाओ चढ़न दा। भगत कबीर जी नू सेवका ने पुछया सी, महाराज तुसी स्वर्ग भी निंद दिते ते कह रहे हो भाई पूर्ण गुरु

भगत सैन जी दे घर आई। सोभा सुनी है ना, सिमरन वाला है। भगत सैन जी ने भोजन पानी छकाया, सेवा कीती। रात्रि शुरू हुई, महापुरुषां ने कीर्तन भी आरंभ कर दिया। ते भगत सैन जी अखां मूंद के बैठ गए।

तू सवेरे क्यों नहीं आया? नीवी पाक शर्मिंदे होके खलोते। राज द्वार गया शर्माई ते जदों राजा कोल आया ते आके आखन लगा सैन तू फेर आ गया, अजे सवेरे ते गया है अमृत वेले तू हुण फेर आ गया, भई किसे चीज दी लोड़ है तेनूं?

अज तू मैं तेरे चरण पुटिया करा तू नहीं मेरे बराबर राज गद्दी ते बैठिया कर हुण दरबार लगदा है ना ते राजा सैन जी नू

ये जो शब्द आप श्रवण कर रहे हो गुरु अर्जन देव पातशाह जी दा शुकराने दा शब्द है सुल ही ते नारायण राख समय दा बादशाह जहांगीर जिसनू ए गल चंगी नहीं सी लगदी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जावे गुरु नानक दे दर ते जिथे गुरु के सिख आके जुड़दे सन हिंदू भी और मुसलमान भी रूहानियत प्राप्त करन लई हजूर दे चरणा विच आ जुड़दे सन इस दे मन विच बड़ा दुख सी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जा रही है अपने शीपा सलार नू हुकम दिता भई तू कश्मीर नू जा रहे हैं जंग करन लई ते रस्ते विच गोंदवाल नाम करके पिंड है जिथे गुरु अर्जन देव रहंदा है उस नू भी शोध दा जाए उचारण करो श्री वाहिगुरु ते जदों ए पता गुरु अर्जन देव पातशाह जी नू लग्या ता सिखा ने बेनती कीती जो इस शब्द विच अंकित है प्रथमे मता जे पत्री चलावो द्वितीय मता दोए मानक पहुंचावो तृतीय मता किश करो उपाया मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया हजूर अगे बेनती कीती गई कि महाराज जे हुक्म करो ता बादशाह जहांगीर नू पत्रका लिख दईए जां दो सियाने बंदे भेज दियो कुछ उपा जरूर करो ता धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया नेत नाल जदों बड़े हंकार दे नाल सुली खां चढ़ाई करके आ रहा सी ता इस दा घोड़ा ऐसा पागल होया बलदे पठे विच जा वड़िया ते सुनी समेत स्वाह हो गया एक शुकराने वजों हजूर ने शब्द उचारण कीता सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ

अपनी वृथा को हर अपने स्वामी पे, अपनी वृथा को हर अपने स्वामी पे, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा, जो तुम्हारे दुख तत्काल

कै मन लाजुम रसा, अवरा पै कै मन लाजुम रसा। महाराज सतगुरु जी वचन कर रहे ने पाई, जो मन दी बिरथा है ये वागुरु अगे आख, किसी मनुख कोल ना कहो। ये बंदा मन दी बिरथा, मन दी गल लोकां पास कर दे, मन लोकां पास फरोल दे। महाराज कहते नहीं, जे लोकां कोल गल करेगा अपना दुख दसेगा, वो तेनू भी दुख होर सुना दूगा। बंदे कोल मन ना फरोल, वागुरु पास फरोल। मन दी गल गोज गल जी की कीजे सतगुर पास, जो मन दी गल है ऐ मनुख जो तू किसे कोल नहीं कह सकदा, तो गुरु कोल कह दे, वागुरु कोल कह दे। गोज गल जी की कीजे सतगुर पास, ता सर्व सुख पाई। मन दी गल कोई वरी है कोई दुख है, गुरु नू आ। महाराज वचन कर दिए ने, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पै, ता आगे अपनी बिरथा बहुत बहुत कडास। अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पै, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा। वो वागुरु अगे बेनती कर, जेड़ा एक छिन विच वो दुखां नूं दूर करन दी समर्था रखदा है। महाराज इस भजन विच इस शब्द विच

मस्तं भगनंत शैलं मस्तं भगनंत शैलं तर्दमंत्रंत पपीलक साग्रं लघंत पिंगं साग्रं लघंत पिंगं तं प्रकाश अंधक है साध संगेण शिवरंत गोविंद साध संगेण शिवरंत।

नमो श्री भगवती बढ़ली सरोही। ये शस्त्रां दी पूजा है। जिस वेले योधे रण विच जूझ दे ने शस्त्र नू नमस्कार करके शस्त्र दी पूजा उचार दे ने, ओ शब्दां दा वर्णन हो रहा है। तलवार दे सारे नां ने, भगौती बडैली सरोही, ये नाम हन तलवार दे। शस्त्र दी पूजा है, गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे नमो श्री भगौती।

करे एक दे द्वय सुभता हाथ सोही सुभता हाथ सोही नमो लोहे की पत्र का झलहे तहंती नमो जीव ज्वाला मुखी ज्यो बलंती नमो जीव ज्वाला मुखी ज्यो बलंती नमो पान की बान गंगा तरंगी नमो पान की बान गंगा तरंगी तेरे साम है मोक्ष दाती अपंगी फिरे शाम है मोख दाता।

संगीत भुजंग प्रयात छंद शस्त्रां दे नाम और शस्त्रां दी पूजा साहब जी संगीत छंद विच गा के दसदे आ कहिंदे संगीत भुजंग प्रयात छंद आगर्दन तीरं तुक तड़क आगर्दन तीरं तुक तड़क आगर्दन तीरं तुक तड़क आगर्दन तीरं

0: भाई नंदलाल जी,
1: ताल बे मौला
0: हमेशा जिंदा अस्त,
1: हमेशा जिंदा अस्त, ताल बे मौला हमेशा जिंदा अस्त।

जम त्रास मिटे, नाम लिए जम त्रास मिटे, तल काल नसे हर सर धैये, लोक परलोक सभी सुधरे। सेवा करन दा फल, सेवा दी महत्ता साहिब गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे, लोक परलोक सभी सुधरे, लोक परलोक सभी सुधरे, हर भगत परा

0: चार ताल के अंदर ए जोड़ी का खास संबंध है। जिस तरह इधरों आवाज और तान लगाने पेंदे ने जोड़ी विच इस दे नाल तोड़े और तिहाइयां बजाउणियां पेंदियां ने और खास तौर पर जोड़ी के बोल का और ध्रुपद का संबंध है। तुसी सरवण किया हुण गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सेव करो करना निज की, तो साहब कहिंदे सेव करी इन्हीं की भावत, शस्त्र की सेवा और शस्त्र की पूजा। गुरु गोबिंद सिंह जी फरमा रहे
1: सेव करो करना निज की जैसे उपचार पदार्थ पिए, नाम लिए जम त्रास मिटे कल काल नसे हर शरण सिधरिए, लोक परलोक सभी सुधरे हर भगत प्राप्त होए तिहाइए, दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, अस प्रभ छोड़ अवर
0: फतेह सतगुरु की। यह जो जंग विच फतेह हुई है यह किसी आदमी की नहीं, यह वाहगुरु की फतेह है। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते कि खालसे की फतेह चार कूट विच होएगी, चढ़दे तो लहिंदे तक खालसे की फतेह होएगी और खालसे के झंडे झूलणगे। उन्होंने अपने शब्द श्रवण करने गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे
1: लंक लूट लिया।

0: देख खालसे को तुर्क जाएंगे भाई, देख खालसे को तुर्क जाएंगे
1: भाई। सौ एक लड़ाऊ करे सिंह
0: झूलन नेगे हस्ती साजे, झूलन नेगे हस्ती साजे, द्वार द्वार पर नौबत धरे। सवा लाख जब धुखे पलीता, सवा लाख जब धुखे पलीता, तबे खालसा उदे

लोटा गुआच गया, पैसे गुआच गए, तो सारे पांड सिद्धा को लगे साडा लोटा लभ दियो किसे ने चुक लिया, हुण लुकोया सिद्धा नहीं सी लभ के किवें देंदे। सिद्धा ने लुको ए लोटा, सिद्धा ने लोटा जान के लुकोया सी, असी लुकोवांगे पांड साडे कोल आणगे ते असी भेजांगे गुरु नानक दे कोल। साडा लुकोया लोटा कोई लभ नहीं सकदा ते गुरु नानक हार जावेगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ओही गल सिद्धा ने पंडा नूं कहा, ओ जिहड़ा गुरु नानक बैठा है जाओ उहदे कोल, उस नूं आखो जे उहदे विच कोई शक्ति है ते तुहाडा लोटा लभ देवे। ये सारे पांड धन गुरु नानक साहब दे कोल गए ते बेनती कीती, महाराज साडा माया वाला लोटा लभ दिओ, किसे ने चुक लिया। तां भाई गुरदास जी बयान करते,

आखो सतनाम श्री वाहे। पंडा ने बेनती की, बाबा जानी जान पुरख, वो बाबा नानक उते जानी जान। सिद्धा ने जिथे लोटा लुकोया सी, गुरु नानक साहब ने उथों कढ दिता। हुण लोक जय जयकार करन लग पे। सिद्धां दा लुकोया लोटा कोई लभ नहीं सी सकदा, पर बाबे नानक ने लभ दिता। गुरु नानक दी जय जयकार होण लग पई, पर सिद्धां नूं होर गुस्सा चढ़ गया।

पंगर नाथ कहन लगा, ए नानक तू पखंड करना है। पेख उतार उदास दा, पहला तू उदासियां वाले कपड़े पाए, हुण संसारी कपड़े पा ले। पंगर नाथ कहंदा है, ऐ नानक तू ग्रिस्ती है, तू व्याह कीता है, तेरे बच्चे हैं, तो जिहड़ा ग्रिस्ती है तियां पुत्रां वाला है, वो रब दा भगत नहीं हो सकता, वो जोगी नहीं हो सकता, वो संत नहीं हो सकता। ये गल पंगर नाथ ने कही। हुण सत्संग तुसी सारे ग्रिस्ती बैठे हो, तियां पुत्रां वाले परिवार वाले, पंगर नाथ दा यह सवाल भी सुन लो। पंगर नाथ कहंदा है, ग्रिस्ती उच्चा नहीं हो सकता, ग्रिस्ती रब दा भगत नहीं हो सकता, जोगी नहीं हो सकता, संत नहीं हो सकता, ग्रिस्ती माड़ा है। ये पंगर नाथ दा विचार है, जोगियां दा विचार है, ते गुरु नानक दा की विचार है, वो भी सरवण करो।

ना जाते हो, तेरी मां ने, तेरे गुरु ने, तेरे मन दा भांडा चंगी तरह धोता नहीं, भाव तेनू चंगी सिख्या नहीं दिती, केड़ी

ओ जन्म लवे ओ जगह सूतकाली। ते साहब जी कहन लगे सूतक दा मतलब तुसा झूठ के। ते साहब जी कहन लगे जे तुसी सूतक दी गल करदे हो ते फिर सूतक तों ते कोई भी जगह

एक औरत मर जाए पालिए कहते ने लभना ते फिर इंसान व्याह वास्ते दूसरी औरत लभद औरत दे बगैर जीवन नहीं पंड होवे बंधान और दुनिया दा हर रिश्ता।